श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालन

हरि भक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन प्रकाशक हरि भक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर धुंडा महाराज मठ उत्पात गल्ली पंढरपूर वाचक ऋषिकेश।

बनते बड़े हो चक्के पर अकल के बड़े हो चक्के। हर देखी कहाँ है दुनिया वो मेरे सामने बच्चे हर मुझको

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म संजोग से, गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन। भूली हुई दास्तां, भूली हुई यादें फिर से आती हैं तो जी बेकरार हो जाता है। जिन्हें भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? वो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, फिर भी यादों में ऐसे बसे हैं कि कमबख्त जाते ही नहीं।

दिल ने पुकारा आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास पर 90.8 पर। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आबरू से, गाया था मुकेश ने, गीतकार थे जीएल रवेल, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दोस्तों भूली हुई दास्तानें सताती हैं जब ये प्यार मोहब्बत वाली बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनती है तो पूरी जिंदगी ही बन जाती है। किसी को सामने देखकर जहां भुला देती है, एक ऐसा ही प्यारा सा गीत है फिल्म जूली से, गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।

दिल ने पुकारा में अभी आपने बड़ा ही खूबसूरत गीत सुना जो शायद कभी भुलाया जाए। कुछ गीत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, जैसे कि पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, इस पहली तनख्वाह से ली गई चीजें, पहली गाड़ी, पहला खुद का घर, पहला एरोप्लेन का सफर, पहली ट्रिप और न जाने क्या क्या। दोस्तों, लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है तो क्या मैका भूल जाती है? कभी नहीं। पर देखिए एक ये बड़ा ही सुहाना गीत।

पुकारा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों, हर लड़की अपनी माँ का घर भूलकर ससुराल में इतनी घुल मिल जाती है, इसलिए तो ये भारतीय संस्कृति विवाह का ये अटूट बंधन चलता आ रहा है। ये रीति रिवाज, ये रस्में निभाई जाती है सदियों से, और यही आगाज रहे तो शायद चलते ही रहेंगे ये बंधन, ये रस्म और रीति रिवाज सदियों तक। शायद ये बंधन इसलिए भी टिके हैं कि कोई किसी को भुला देता है।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म सट्टा बाजार से, गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8 रेडियो विश्वास, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और हम कुछ भूले बिसरे सुहाने गीत सुन रहे हैं। दोस्तों सारी संजोग की बातें हैं, कोई किसी को भुला देता है, कोई किसी को याद रखता है, कोई संस्कृति के पथ पर चलकर समाज व्यवस्था को संजोए रखता है और हम और आप उन्हीं में से एक जरूर है। तो ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे फिल्म साथी का ये गीत, गाया है मुकेश ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है नौशाद। तो दोस्तों ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बड़े ही विश्वास के साथ रेडियो विश्वास पर। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म संजोग से, गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन।

दिल ने पुकारा आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास पर 90.8 पर। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आबरू से, गाया था मुकेश ने, गीतकार थे जीएल रवेल, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दोस्तों, भूली हुई दास्तानें सताती हैं जब ये प्यार मोहब्बत वाली बातें अपनी जिंदगी का

हिस्सा बनती है तो पूरी जिंदगी ही बन जाती है। किसी को सामने देखकर जहां भुला देती है, एक ऐसा ही प्यारा सा गीत है फिल्म जूली से, गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।

दिल ने पुकारा में अभी आपने बड़ा ही खूबसूरत गीत सुना जो शायद कभी भुलाया जाए। कुछ गीत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, जैसे कि पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, इस पहली तनख्वाह से ली गई चीजें, पहली गाड़ी, पहला खुद का घर, पहला एरोप्लेन का सफर, पहली ट्रिप और न जाने क्या क्या। दोस्तों, लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है तो क्या मैका भूल जाती है? कभी नहीं। पर देखिए एक ये बड़ा ही सुहाना गीत।

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों, हर लड़की अपनी माँ का घर भूलकर ससुराल में इतनी घुलमिल जाती है, इसलिए तो ये भारतीय संस्कृति विवाह का ये अटूट बंधन चलता आ रहा है। ये रीति रिवाज, ये रस्में निभाई जाती है सदियों से, और यही आगाज रहे तो शायद चलते ही रहेंगे ये बंधन, ये रस्म और रीति रिवाज सदियों तक। शायद ये बंधन इसलिए भी टिके हैं कि कोई किसी को भुला देता है।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म सट्टा बाजार से, गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8 रेडियो विश्वास, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और हम कुछ भूले बिसरे सुहाने गीत सुन रहे हैं। दोस्तों सारी संजोग की बातें हैं, कोई किसी को भुला देता है, कोई किसी को याद रखता है, कोई संस्कृति के पथ पर चलकर समाज व्यवस्था को संजोए रखता है और हम और आप उन्हीं में से एक जरूर है। तो ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे फिल्म साथी का ये गीत, गाया है मुकेश ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है नौशाद। तो दोस्तों ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बड़े ही विश्वास के साथ रेडियो विश्वास पर। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: प्यार में, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा,
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं बिंदु बिंदु,
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
3: क्या,

0: अब मैं चाहते हूँ।
1: अजी ये क्या कह रही हैं आप,
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: नहीं मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।
0: नहीं गाऊंगी।